0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है लंपेदूसा द्वीप में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: पोप लियो चौथवें ने विगत 4 जुलाई को लंपेदूसा द्वीप का दौरा किया। लंपेदूसा द्वीप प्रवास संकट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इटली का यह द्वीप उत्तरी अफ्रीकी तट के करीब है और संघर्ष, उत्पीड़न एवं गरीबी से बचने वाले हजारों अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए यूरोप में घुसने का प्रवेश द्वार है। अपने साफ फिरोजी समुद्र, सफेद रेतीले तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का रैबिट बीच विश्व के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है और यह समुद्री कछुओं के अंडे देने का महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस तरह लंपेदूसा द्वीप अपनी सामरिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री जैव विविधता और प्रवासी संकट के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बावजूद लंपेदूसा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह यूरोप एवं अफ्रीका के बीच होने के कारण प्रवासी संकट का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां बार बार मानवीय त्रासदियां एवं समुद्री दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हर वर्ष हजारों लोग छोटी एवं असुरक्षित नावों से भूमध्य सागर पार करके यहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस यात्रा के दौरान अनेक नावें डूब जाती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लंपेदूसा का नाम मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन गया है। दूसरी बड़ी समस्या जिससे लंपेदूसा जूझ रहा है वह है सीमित संसाधनों और छोटी आबादी वाले इस द्वीप पर अचानक भारी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने से स्थानीय प्रशासन एवं निवासियों पर भारी दबाव पड़ना। इन्हीं परिस्थितियों के बीच पोप लियो चौदहवें ने 4 जुलाई को लंपेदूसा की एक दिवसीय यात्रा की। उन्होंने अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान प्रवासियों एवं शरणार्थियों की बुरी हालत पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita.
0: 4 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे भूमध्य सागरीय द्वीप पहुंचने पर पोप लियो चौदहवें ने द्वीप के लोगों एवं लंपेदूसा से गुजरने वाले अप्रवासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया। साथ ही उन लोगों के प्रति शोक प्रकट किया जो अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर सके। लंपेदूसा पहुंचकर पोप सबसे पहले कब्रिस्तान गए, जहाँ समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कब्रिस्तान में हर तरह के लोगों को दफनाया गया है, कैथोलिक और मुस्लिम, जवान और बूढ़े तथा काले एवं गोरे, जो आज़ादी की तलाश में समुद्र में खो गए। फिर वे यूरोप जाने का द्वार गए, जो एक स्मारक है और उन अप्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।
1: Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto.
0: लंपेदूसा के लोगों ने संत पापा के आने के करीब एक घंटे बाद उनकी आवाज सुनी, जब उन्होंने सलाइन इलाके के एरिना खेल मैदान में अपने दौरे के पहले हिस्से में छाई चुप्पी को तोड़ा और पूरे समुदाय को उनके गर्म जोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उनका पहला विचार संत पापा फ्रांसिस के लिए था, जिन्होंने 2013 में इसी शहर को प्रवासी त्रासदी का केंद्र एवं एकजुटता की वेदी बनाया था। पोप लियो ने कहा, आपने फाउलोरो पियर तट का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है, यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्वाधिकारी ने आपके समुदाय एवं हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया है। आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। इसके बाद पोप ने एक खुली जीप में भीड़ के बीच से गुजरते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिया तथा लंपेदूसा की संरक्षिका पोतो साल्वो की माता मरियम की प्रतिमा वाले सादे मंच से लंपेदूसा एवं लिनोसा के विश्वासों का अभिवादन किया। तत्पश्चात अरेना खेल मैदान में करीब 6,000 लोगों के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित किया। लंपेदूसा द्वीप में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए पोप लियो चौदहवें ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के साथ हुए बुरे वर्ताव तथा समुद्र में हुई मौत की निंदा की और दुनिया से इस घोर दुख पर ठोस एवं दया से जवाब देने की अपील की। अपने प्रवचन में पोप लियो ने कहा, आज लंपेदूसा एवं उसका पड़ोसी द्वीप लिनोसा, सुसमाचार में वर्णित भले समारी की कहानी में यरूशलेम से जेरिको जाने वाले रास्ते के समान खतरनाक है। यहाँ आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों इंसानों को लुटेरों के हाथों पड़ते देखा है, जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया है, उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। संत पापा ने दुख जताया कि समुद्र ने कई और लोगों की जान ले ली है जो अपनी उम्मीद की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, जिनकी मौजूदगी हमें उतनी ही चुनौती देती है जितनी उन लोगों की जिन्हें ध्यान और मदद की जरूरत है। पोप ने आगे कहा, असल में किसी भी चिंतन या सोच से पहले जो लोग हमारे सामने हैं उनसे मिलना हमें उनके करीब आने के लिए कहता है। लंपेदूसा के लोगों की ओर मुड़ते हुए पोप ने उनकी एकजुटता के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, लंपेदूसा के भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए करुणा का चमत्कार एक बार फिर होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, दूसरों तक पहुँचने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हल्के में लिया जाए, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। पोप ने कहा कि जो लोग खुद को करुणा और दया के इस माहौल में खींच लेते हैं वे अलग तरह से जीना शुरू करते हैं, एक नए तरीके से नागरिक बन जाते और अलग तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन 23वें, संत पापा पॉल 6वें और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा सोची गई प्यार की सभ्यता सच में उभर सकती है। उन्होंने कहा, पिछली सदी के बहुत सारे नबियों और शहीदों के साथ वे समझ गए थे कि सिर्फ दया ही इंसान के दिल की गहराई एवं युद्ध के डरावनेपन का जवाब दे सकती है और एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकती है। अब इन दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर हम एक ऐसी सदी में आ गए हैं जिसमें हमें प्यार की सभ्यता को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक रूप देना होगा। पोप लियो ने दिल से अपील करते हुए कहा, हम जो दुख देख रहे हैं उसकी गंभीरता हमें इस बुलावे के असली रूप को समझने में मदद करे। इस तरह लंपेदूसा में पोप लियो 14वीं की प्रेरित यात्रा करुणा, मानव गरिमा एवं एकजुटता का सशक्त संदेश देती है। यह यात्रा हमें स्मरण दिलाती है कि प्रत्येक प्रवासी और शरणार्थी सबसे पहले एक इंसान है जिसकी सुरक्षा, सम्मान और आशा की रक्षा करना समस्त मानवता की जिम्मेदारी है। पोप का संदेश केवल लंपेदूसा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आह्वान है कि भय, उदासीनता और भेदभाव के स्थान पर प्रेम, करुणा, न्याय एवं भाईचारे को अपनाया जाए। इस प्रकार लंपेदूसा आशा, शांति एवं मानवीय संदेश का प्रतीक बनकर विश्व को यह प्रेरणा देता है कि हम प्रत्येक पीड़ित एवं जरूरतमंद व्यक्ति में ईश्वर की छवि को पहचानें और उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने लंपेदूसा में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के बोर्गो लौदातो सी में 200 गरीब लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। संत पापा के साथ भोजन नाम के इस पहल की शुरुआत सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पवित्र मिसा समारोह से होगी। पवित्र मिसा के बाद बोर्गो लौदातो सी का दर्शन करने के बाद संत पापा के साथ वे खाना खाएंगे। यह मीटिंग अगस्त 2025 में शुरू की गई एक पहल पर आधारित है, जब संत पापा लियो 14वें ने इटली में अल्बानो धर्म प्रांत के गरीब लोगों के साथ भोजन किया था। तब से यह मुलाकात एक सालाना कार्यक्रम बन गई है, जिसे उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी केंद्र बढ़ावा दे रहा है, जो बोर्गो लौदातो सी परियोजना के विकास की देखरेख करता है। हर साल अलग धर्म प्रांत को बुलाया जाएगा ताकि वे गरीब लोगों, प्रवासियों, शरणार्थियों और मुश्किलों का सामना कर रहे दूसरे लोगों को एक साथ ला सकें, उन्हें दुनिया की खूबसूरती में डूबे रहने का एक दिन दे सकें और संत पापा से मिलने का अवसर दे सकें। इस साल का कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी केंद्र, उदार सेवा के लिए गठित विभाग और रोम धर्म प्रांत मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बागियो ने कहा कि बोर्गो लौदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है, जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। उस संदेश को दोहराते हुए उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस मारिन ने कहा, संत पापा की पसंद इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्चा दान निकटता, मुलाकात और साझाकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा, जब कलीसिया सबसे कमजोर लोगों को केंद्र में रखती है तो यह सुसमाचार को दृश्यमान बनाती है और गवाही देती है कि कोई भी ईश्वर के हृदय के हाशिए पर नहीं है। और महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर, जो वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव हैं, वाटिकन और संघीय गणराज्य नाइजीरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए 2 जुलाई को संघीय गणराज्य नाइजीरिया पहुंचे और मंगलवार 7 जुलाई को अपना दौरा खत्म किया। यह पश्चिम अफ्रीकी देश 30 मिलियन से ज्यादा कैथोलिक और 10,000 से ज्यादा कैथोलिक पुरोहितों का घर है, जबकि इसे लगातार बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। विदेश मंत्री बियांका और इकोवास कमीशन के अध्यक्ष अमर अलेयू भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति टिनुबू ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने सरकार के इस वादे को फिर से पक्का किया है कि वह अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को प्राथमिकता देंगे और देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच शांति, मेलजोल और सहनशीलता को बढ़ावा देंगे। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने रविवार सुबह अबूजा की गार्की में नाइजीरिया की रानी महागिरजा घर में वाटिकन और नाइजीरिया के बीच 50 साल के राजनयिक रिश्तों के लिए धन्यवादी मिसा समारोह का अनुष्ठान किया। उधर सरकारी मीडिया ने बताया कि मंगलवार को सेंट्रल दमिश्क में उस होटल के पास 2 विस्फोटक उपकरण फटने से 18 लोग घायल हो गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों रुके हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल को विस्फोटक उपकरण मिले थे और वे उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वे फट गए। एक विस्फोटक पार्क में हुई कार के अंदर और दूसरी कूड़ेदान में छिपाई गई थी। राष्ट्रपति मैक्रो, जो राष्ट्रपति अहमद अल शर्रा से बातचीत करने के लिए सीरिया की राजधानी में थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमले में एक स्कूल हेडमास्टर समेत चार लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि गाड़ी एक प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में घुस गई थी और उसे खतरा माना जा रहा था। पिछले महीने युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह इजरायल का सबसे बड़ा खतरनाक हमला था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 4,319 लोग मारे गए थे। इस बीच यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि 1,000 से ज्यादा दिनों की लड़ाई के बाद गाजा में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। वहां बच्चे मारे गए हैं, अपाहिज हो गए हैं और बेघर हो गए हैं, और उन्हें जिंदा रहने, बढ़ने और ठीक होने के लिए जरूरी चीजों से वंचित कर दिया गया है। उधर जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से ही हैती एक बड़े संकट से गुजर रहा है। तब से हथियारबंद गिरोह ने लगातार अपना कंट्रोल बढ़ाया है, जिससे संस्थाएं, आधारभूत संरचनाएं और जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। हैती में मानवीय सुरक्षा संकट लगातार जारी है। हैती के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत कार्लोस के अनुसार गिरोह हिंसा के कारण लगभग 1.5 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कम से कम 1,600 लोग मारे गए हैं। इन्फोबे के साथ एक साक्षात्कार में यूएन दूत ने कहा कि हथियारबंद गिरोह, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 10,000 से 15,000 के बीच है, राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के लगभग 70-75% हिस्से पर असर या कंट्रोल रखते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है लंपेदूसा द्वीप में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: पोप लियो 14वें ने विगत 4 जुलाई को लंपेदूसा द्वीप का दौरा किया। लंपेदूसा द्वीप प्रवास संकट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इटली का यह द्वीप उत्तरी अफ्रीकी तट के करीब है और संघर्ष, उत्पीड़न एवं गरीबी से बचने वाले हजारों अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए यूरोप में घुसने का प्रवेश द्वार है। अपने साफ फिरोजी समुद्र, सफेद रेतीले तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का रैबिट बीच विश्व के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है और यह समुद्री कछुओं के अंडे देने का महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस तरह लंपेदूसा द्वीप अपनी सामरिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री जैव विविधता और प्रवासी संकट के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बावजूद लंपेदूसा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह यूरोप एवं अफ्रीका के बीच होने के कारण प्रवासी संकट का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां बार बार मानवीय त्रासदियां एवं समुद्री दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हर वर्ष हजारों लोग छोटी एवं असुरक्षित नावों से भूमध्य सागर पार करके यहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस यात्रा के दौरान अनेक नावें डूब जाती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लंपेदूसा का नाम मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन गया है। दूसरी बड़ी समस्या जिससे लंपेदूसा जूझ रहा है वह है सीमित संसाधनों और छोटी आबादी वाले इस द्वीप पर अचानक भारी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने से स्थानीय प्रशासन एवं निवासियों पर भारी दबाव पड़ना। इन्हीं परिस्थितियों के बीच पोप लियो 14वें ने 4 जुलाई को लंपेदूसा की एक दिवसीय यात्रा की। उन्होंने अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान प्रवासियों एवं शरणार्थियों की बुरी हालत पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया।
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita.
0: 4 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे भूमध्य सागर द्वीप पहुंचने पर पोप लियो 14वें ने द्वीप के लोगों एवं लंपेदूसा से गुजरने वाले अप्रवासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया। साथ ही उन लोगों के प्रति शोक प्रकट किया जो अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर सके। लंपेदूसा पहुंचकर पोप सबसे पहले कब्रस्थान गए, जहाँ समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कब्रस्थान में हर तरह के लोगों को दफनाया गया है, कैथोलिक और मुस्लिम, जवान और बूढ़े तथा काले एवं गोरे, जो आज़ादी की तलाश में समुद्र में खो गए। फिर वे यूरोप जाने का द्वार गए, जो एक स्मारक है और उन प्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।
1: Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto.
0: लंपेदूसा के लोगों ने संत पापा के आने के करीब एक घंटे बाद उनकी आवाज़ सुनी, जब उन्होंने सलाइन इलाके के एरिना खेल मैदान में अपने दौरे के पहले हिस्से में छाई चुप्पी को तोड़ा और पूरे समुदाय को उनके गर्म जोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उनका पहला विचार संत पापा फ्रांसिस के लिए था, जिन्होंने 2013 में इसी शहर को प्रवासी त्रासदी का केंद्र एवं एकजुटता की वेदी बनाया था। पोप लियो ने कहा, आपने फाओलोरो पियर तट का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है। यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्वाधिकारी ने आपके समुदाय एवं हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया है। आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। इसके बाद पोप ने एक खुली जीप में भीड़ के बीच से गुजरते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिया तथा लंपेदूसा की संरक्षिका पोतो साल्वो की माता मरियम की प्रतिमा वाले सादे मंच से लंपेदूसा एवं लिनोसा के विश्वासों का अभिवादन किया। तत्पश्चात अरेना खेल मैदान में करीब 6,000 लोगों के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित किया। लंपेदूसा द्वीप में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए पोप लियो 14वें ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के साथ हुए बुरे वर्ताव तथा समुद्र में हुई मौत की निंदा की और दुनिया से इस घोर दुख पर ठोस एवं दया से जवाब देने की अपील की। अपने प्रवचन में पोप लियो ने कहा, आज लंपेदूसा एवं उसका पड़ोसी द्वीप लिनोसा सुसमाचार में वर्णित भले समारी की कहानी में यरूशलेम से जेरिको जाने वाले रास्ते के समान खतरनाक है। यहाँ आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों इंसानों को लुटेरों के हाथों पड़ते देखा है, जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया है, उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। संत पापा ने दुख जताया कि समुद्र ने कई और लोगों की जान ले ली है जो अपनी उम्मीद की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, जिनकी मौजूदगी हमें उतनी ही चुनौती देती है जितनी उन लोगों की जिन्हें ध्यान और मदद की जरूरत है। पोप ने आगे कहा, असल में किसी भी चिंतन या सोच से पहले जो लोग हमारे सामने हैं उनसे मिलना हमें उनके करीब आने के लिए कहता है। लंपेदूसा के लोगों की ओर मुड़ते हुए पोप ने उनकी एकजुटता के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, लंपेदूसा के भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए करुणा का चमत्कार एक बार फिर होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, दूसरों तक पहुँचने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हल्के में लिया जाए, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। पोप ने कहा कि जो लोग खुद को करुणा और दया के इस माहौल में खींच लेते हैं वे अलग तरह से जीना शुरू करते हैं, एक नए तरीके से नागरिक बन जाते और अलग तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन 23वें, संत पापा पॉल 6वें और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा सोची गई प्यार की सभ्यता सच में उभर सकती है। उन्होंने कहा, पिछली सदी के बहुत सारे नबियों और शहीदों के साथ वे समझ गए थे कि सिर्फ दया ही इंसान के दिल की गहराई एवं युद्ध के डरावनेपन का जवाब दे सकती है और एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकती है। अब इन दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर हम एक ऐसी सदी में आ गए हैं जिसमें हमें प्यार की सभ्यता को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक रूप देना होगा। पोप लियो ने दिल से अपील करते हुए कहा, हम जो दुख देख रहे हैं उसकी गंभीरता हमें इस बुलावे के असली रूप को समझने में मदद करे। इस तरह लंपेदूसा में पोप लियो 14वीं की प्रेरित यात्रा करुणा, मानव गरिमा एवं एकजुटता का सशक्त संदेश देती है। यह यात्रा हमें स्मरण दिलाती है कि प्रत्येक प्रवासी और शरणार्थी सबसे पहले एक इंसान है जिसकी सुरक्षा, सम्मान और आशा की रक्षा करना समस्त मानवता की जिम्मेदारी है। पोप का संदेश केवल लंपेदूसा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आह्वान है कि भय, उदासीनता और भेदभाव के स्थान पर प्रेम, करुणा, न्याय एवं भाईचारे को अपनाया जाए। इस प्रकार लंपेदूसा आशा, शांति एवं मानवीय संदेश का प्रतीक बनकर विश्व को यह प्रेरणा देता है कि हम प्रत्येक पीड़ित एवं जरूरतमंद व्यक्ति में ईश्वर की छवि को पहचानें और उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने लंपेदूसा में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में 200 गरीब लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। संत पापा के साथ भोजन नाम की इस पहल की शुरुआत सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पवित्र मिसा समारोह से होगी। पवित्र मिसा के बाद बोर्गो लाउदातो सी का दर्शन करने के बाद संत पापा के साथ वे खाना खाएंगे। यह मीटिंग अगस्त 2025 में शुरू की गई एक पहल पर आधारित है, जब संत पापा लियो 14वें ने इटली में अल्बानो धर्म प्रांत के गरीब लोगों के साथ भोजन किया था। तब से यह मुलाकात एक सालाना कार्यक्रम बन गई है, जिसे उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र बढ़ावा दे रहा है, जो बोर्गो लाउदातो सी परियोजना के विकास की देखरेख करता है। हर साल अलग धर्म प्रांत को बुलाया जाएगा ताकि वे गरीब लोगों, प्रवासियों, शरणार्थियों और मुश्किलों का सामना कर रहे दूसरे लोगों को एक साथ ला सकें, उन्हें दुनिया की खूबसूरती में डूबे रहने का एक दिन दे सकें और संत पापा से मिलने का अवसर दे सकें। इस साल का कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र, उदार सेवा के लिए गठित विभाग और रोम धर्म प्रांत मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बागियो ने कहा कि बोर्गो लाउदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है, जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। उस संदेश को दोहराते हुए उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस मारिन ने कहा, संत पापा की पसंद इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्चा दान निकटता, मुलाकात और साझाकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा, जब कलीसिया सबसे कमजोर लोगों को केंद्र में रखती है तो यह सुसमाचार को दृश्यमान बनाती है और गवाही देती है कि कोई भी ईश्वर के हृदय के हाशिए पर नहीं है। और महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर, जो वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव हैं, वाटिकन और संघीय गणराज्य नाइजीरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए 2 जुलाई को संघीय गणराज्य नाइजीरिया पहुंचे और मंगलवार 7 जुलाई को अपना दौरा खत्म किया। यह पश्चिम अफ्रीकी देश 30 मिलियन से ज्यादा कैथोलिक और 10,000 से ज्यादा कैथोलिक पुरोहितों का घर है, जबकि इसे लगातार बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। विदेश मंत्री बियांका और इकोवास कमीशन के अध्यक्ष अमर अलेयू भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति टिनुबू ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने सरकार के इस वादे को फिर से पक्का किया है कि वह अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को प्राथमिकता देंगे और देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच शांति, मेलजोल और सहनशीलता को बढ़ावा देंगे। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने रविवार सुबह अबुजा की गार्की में नाइजीरिया की रानी महागिरजा घर में वाटिकन और नाइजीरिया के बीच 50 साल के राजनयिक रिश्तों के लिए धन्यवादी मिसा समारोह का अनुष्ठान किया। उधर सरकारी मीडिया ने बताया कि मंगलवार को सेंट्रल दमिश्क में उस होटल के पास 2 विस्फोटक उपकरण फटने से 18 लोग घायल हो गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों रुके हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल को विस्फोटक उपकरण मिले थे और वे उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वे फट गए। एक विस्फोटक पार्क में हुई कार के अंदर और दूसरी कूड़ेदान में छिपाई गई थी। राष्ट्रपति मैक्रों, जो राष्ट्रपति अहमद अल शर्रा से बातचीत करने के लिए सीरिया की राजधानी में थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमले में एक स्कूल हेडमास्टर समेत 4 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि गाड़ी एक प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में घुस गई थी और उसे खतरा माना जा रहा था। पिछले महीने युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह इजरायल का सबसे बड़ा खतरनाक हमला था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 4,319 लोग मारे गए थे। इस बीच यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि 1,000 से ज्यादा दिनों की लड़ाई के बाद गाजा में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। वहां बच्चे मारे गए हैं, अपाहिज हो गए हैं और बेघर हो गए हैं, और उन्हें जिंदा रहने, बढ़ने और ठीक होने के लिए जरूरी चीजों से वंचित कर दिया गया है। उधर जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से ही हैती एक बड़े संकट से गुजर रहा है। तब से हथियारबंद गिरोह ने लगातार अपना कंट्रोल बढ़ाया है, जिससे संस्थाएं, आधारभूत संरचनाएं और जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। हैती में मानवीय सुरक्षा संकट लगातार जारी है। हैती के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत कार्लोस के अनुसार गिरोह हिंसा के कारण लगभग 1.5 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कम से कम 1,600 लोग मारे गए हैं। इन्फोबे के साथ एक साक्षात्कार में यूएन दूत ने कहा कि हथियारबंद गिरोह, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 10,000 से 15,000 के बीच है, राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के लगभग 70-75% हिस्से पर असर या कंट्रोल रखते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ।

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण

0: प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। ये पद विज्ञान और तकनीकी की बेशुमार प्रगति के बावजूद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से मनुष्य निराश और हताश हो जाता है। किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिल जाता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला भी माना जाता है। यही सब भले और सीधे सरल व्यक्तियों में निराशा का कारण बनता है। श्रोताओं, 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास ही नहीं रह गया था। धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, इससे उसका विश्वास उठ गया था, इसीलिए उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था। परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। किंतु श्रोताओं, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया के सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर आने का मौका देते हैं।

आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ ही होगा। श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ हमें पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें कभी मिल नहीं पाती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतोष कर लें। कहता है कि समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले यह दावा करें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से सब कुछ का ज्ञान वे हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहते हैं। श्रोताओं, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की थाह तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को, ईश्वर की महिमा को पहचानें जो कि अपरंपार है। और अब आइए बाइबल धर्म ग्रंथ के उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय में एक बार फिर उपदेशक यह समझाने की कोशिश करता है कि सब मनुष्यों की गति एक जैसी होती है। वह हम सब से आग्रह करता है कि हम जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने। कहता है कि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है, इसलिए प्रज्ञा की कभी भी उपेक्षा न की जाए। 9वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में उपदेशक कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी और ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सबकी गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी मनुष्य के जैसी ही है। शपथ खाने वाले व्यक्ति की गति उस व्यक्ति के जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। श्रोताओं, सभी चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं। मनुष्य चाहे धर्मी हो या विधर्मी, अंततः सबकी गति एक जैसी होती है। अंत में सभी को मृत्यु के पाश में पड़ना होता है। यहां ऐसा प्रतीत होता है मानो उपदेशक सुलेमान अनंत के भाव को भूल चुका था या फिर अनंत जीवन में उसका विश्वास डगमगा गया था और सब कुछ को उसने भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने सदा सर्वदा रहने वाले जीवन में जवाबदेही की भावना को भुला दिया था। वह जो कुछ अपने सामने देखता था बस उसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के असीम प्रेम को कभी देखने की उसने कोशिश नहीं की। एक बार फिर उपदेशक ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अपने विचारों को किस्मत पर अथवा भाग्य में बदल दिया। उसे इस बात का ज्ञान था कि ईश्वर सब कुछ पर राज करते हैं। जीवन और मरण सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा ही होता है। फिर भी सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे भले हों या बुरे। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन के अनुसार उसने ईश्वर की महिमा को देखने का प्रयास नहीं किया। भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता और तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। श्रोताओं, कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर हैं भी या नहीं, और यदि हैं
तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनते? इन प्रश्नों का जवाब हमें ईश्वर के कार्यों में मिल जाता है, जैसा कि रोमियो को प्रेषित पत्र के पहले अध्याय के 19वें और 20वें पदों में संत पॉल लिखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने अंकावा में एकत्रित इराकी युवा क्रिश्चियनों को विश्वास, प्रेम एवं आशा के मिशनरी बनने का प्रोत्साहन दिया और उनसे कहा कि वे संघर्ष एवं अस्थिरता से भरी इस भूमि पर मसीह की रोशनी एवं शांति लाने वाले बने। इराक के युवा 8 से 11 जुलाई तक अपनी वार्षिक युवा सम्मेलन के लिए एरबिल महाधम प्रांत के अंकावा में एकत्रित हैं। इस अवसर पर पोप लियो ने उन्हें आशा की मिशनरी के रूप में अपने काम को अपनाने का प्रोत्साहन दिया और उनसे ऐसे देश में ख्रिस्त की रोशनी बनने की प्रेरणा दी जो अभी भी युद्ध एवं अस्थिरता के नतीजों का सामना कर रहा है। मिशन विषय वस्तु पर सभा में भाग लेने वाले युवाओं को एक विट्ठो संदेश में पोप ने याद दिलाया कि आज कलीसिया के जीवन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पोप ने कहा, कलीसिया का एक महत्वपूर्ण मिशन है ख्रिस्त की रोशनी बांटकर दुनिया की सेवा करना, और उन्होंने युवाओं को आने वाले साल में कलीसिया एवं दुनिया को आकार देने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कही गई अपनी बात को याद करते हुए पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि युवा न सिर्फ कलीसिया के भविष्य हैं बल्कि वर्तमान भी हैं और उस मुश्किल सच्चाई को पहचानते हुए जिसका सामना कई इराकी ख्रिस्ते अभी भी कर रहे हैं, पोप मानते हैं कि सुसमाचार का साक्ष्य देना अक्सर मुश्किल होता है। आपको ऐसी परिस्थिति में यह रोशनी फैलाने के लिए बुलाया गया है जो अक्सर युद्ध एवं अस्थिरता से भरी है। पोप लियो ने कहा, डरो मत और यह मत सोचो कि तुम इस काम में अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कलीसिया तुम्हारे साथ है, यीशु पर भरोसा रखो। रोशनी की छवि को अपने विचारों के मार्गदर्शक धागे के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे तीन गुणों पर जोर देते हैं जो हर ख्रिस्त शिष्य को बनना चाहिए, विश्वास, प्रेम और आशा। सबसे पहले वे बताते हैं कि प्रकाश हमें देखने में सक्षम बनाता है, इसलिए विश्वास केवल जीवन की कठिनाइयों का जवाब नहीं है बल्कि वास्तविकता की पहचान एवं सच्चाई में जीना है जो विश्वासियों को दुनिया, दूसरों और खुद को ईश्वर की आंखों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। वे युवाओं को अपने जीवन जीने के तरीके के माध्यम से गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि अन्य लोग भी उस सत्य एवं अर्थ की खोज कर सकें जो वे खोज रहे हैं। पोप तब प्रकाश को गर्मजोशी के रूप में दिखाते हैं जो ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। उनका कहना है कि सच्चा मिशन गतिविधि से नहीं बल्कि दैनिक प्रार्थना और संस्कारों से, विशेषकर मेल मिलाप संस्कार और पौत्री यूखरिस्त के माध्यम से पोषित ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात से शुरू होता है। पोप युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने हृदयों को अपने प्रति ईश्वर के प्रेम की ठोस नींव पर स्थापित करें, मसीह के हृदय को खोजें और उन पर अपना जीवन बनाने के लिए नहीं डरें। वे समझाते हैं कि केवल उस प्रेम से जुड़े रहकर ही वे अपने आसपास के लोगों के साथ ईश्वर के प्रेम की गर्माहट और उनके मेल मिलाप की शक्ति की कृपा को साझा कर सकते हैं। अंत में पोप लियो चौदहवें प्रकाश को विकास एवं आशा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मेल मिलाप के लिए तरस रहे क्षेत्रों में युवा ख्रिस्तों को शांति के निर्माता बनने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, आपको विशेष रूप से शांति दूत बनने, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करने और दूसरों को स्थायी शांति द्वारा चिन्हित भविष्य की आशा पैदा करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि वे हमेशा उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिनमें वे रहते हैं, फिर भी वे उन्हें याद दिलाते हैं कि हमेशा अपने दिलों में ख्रिस्त की शांति को राज करने का विकल्प चुनें जिससे वे पुनर्जीवित प्रभु से मिलने वाली आशा के चिन्ह बन सकें। अपना संदेश समाप्त करते हुए पोप लियो ने युवाओं को कलीसिया की माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया और उन्हें अपने जीवन के लिए ईश्वर की प्रेम भरी योजना पर भरोसा करने का प्रोत्साहन दिया। रब्बात के महाधर्माध्यक्ष का कहना है कि उन पर वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और कलीसिया ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। जांच का नतीजा आने तक वे सार्वजनिक समारोहों और धर्माध्यक्ष के रूप में अपने प्रेरित कार्यों को नहीं करेंगे तथा धर्म प्रांत पीड़ितों और अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है।
रब्बात के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल क्रिस्टोबल लोपेज रोमेरो एसडीवी ने घोषणा की है कि जब तक वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के आरोपों की शुरुआती जांच कलीसिया द्वारा नहीं हो जाती, तब तक वे कुछ समय के लिए सार्वजनिक प्रेरितिक सेवा से पीछे हट रहे हैं। बुधवार 7 जुलाई को जारी एक बयान में 74 साल के स्पानी कार्डिनल ने कहा कि जांच अब रोमन कैथोलिक कलीसिया के हाथ में है और उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा किया। इस प्रक्रिया में दखल देने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक समारोहों की अध्यक्षता करने और प्रेरितिक कार्यों में हिस्सा लेने से बचेंगे। कार्डिनल लोपेज ने समझने की अपील की है और कहा है कि धर्म प्रांतीय समुदाय को बिना देर जानकारी मिलने चाहिए। उन्होंने विश्वासियों को उन लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है जो परेशान हैं मोरोको की कलीसिया के लिए और अपने लिए भी, और उन्हें एकजुट रहने और भरोसे के साथ सुसमाचार पर चलते रहने का प्रोत्साहन दिया है। AFP को दिए एक अलग बयान में कार्डिनल ने जांच में अपना पूरा सहयोग दोहराया है और कहा है कि उन्होंने कोई हमला, कोई हिंसा और कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशद बच्चों को दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए पाकिस्तान में कलीसिया की प्रतिबद्धता पर चिंतन करते हुए जोर देते हैं कि बाल सुरक्षा सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी है। महाधर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं, यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। ये पद विज्ञान और तकनीकी की बेशुमार प्रगति के बावजूद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से मनुष्य निराश और हताश हो जाता है। किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिल जाता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला भी माना जाता है। यही सब भले और सीधे सरल व्यक्तियों में निराशा का कारण बनता है। श्रोताओं, 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास ही नहीं रह गया था। धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, इससे उसका विश्वास उठ गया था, इसीलिए उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था। परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। किंतु श्रोताओं, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया के सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर आने का मौका देते हैं।

आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ ही होगा। श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ हमें पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें कभी मिल नहीं पाती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतोष कर लें। कहता है कि समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले यह दावा करें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से सब कुछ का ज्ञान वे हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहते हैं। श्रोताओ, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की थाह तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को, ईश्वर की महिमा को पहचानें जो कि अपरंपार है। और अब आइए बाइबल धर्म ग्रंथ के उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय में एक बार फिर उपदेशक यह समझाने की कोशिश करता है कि सब मनुष्यों की गति एक जैसी होती है। वह हम सबसे आग्रह करता है कि हम जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान मानें। कहता है कि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है, इसलिए प्रज्ञा की कभी भी उपेक्षा न की जाए। 9वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में उपदेशक कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी और ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सब की गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी मनुष्य के जैसी ही है। शपथ खाने वाले व्यक्ति की गति उस व्यक्ति के जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। श्रोताओ, सभी चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं। मनुष्य चाहे धर्मी हो या विधर्मी, अंततः सबकी गति एक जैसी होती है। अंत में सभी को मृत्यु के पाश में पड़ना होता है। यहां ऐसा प्रतीत होता है मानो उपदेशक सुलेमान अनंत के भाव को भूल चुका था, या फिर अनंत जीवन में उसका विश्वास डगमगा गया था और सब कुछ को उसने भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने सदा सर्वदा रहने वाले जीवन में जवाबदेही की भावना को भुला दिया था। वह जो कुछ अपने सामने देखता था बस उसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के असीम प्रेम को कभी देखने की उसने कोशिश नहीं की। एक बार फिर उपदेशक ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अपने विचारों को किस्मत पर अथवा भाग्य में बदल दिया। उसे इस बात का ज्ञान था कि ईश्वर सब कुछ पर राज करते हैं। जीवन और मरण सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा ही होता है। फिर भी सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे भले हों या बुरे। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन के अनुसार, उसने ईश्वर की महिमा को देखने का प्रयास नहीं किया। भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता और तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। श्रोताओ, कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है भी या नहीं, और यदि हैं
तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनते? इन प्रश्नों का जवाब हमें ईश्वर के कार्यों में मिल जाता है, जैसा कि रोमियों को प्रेषित पत्र के पहले अध्याय के 19वें और 20वें पदों में संत पॉल लिखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने अंकावा में एकत्रित इराकी युवा क्रिश्चियनों को विश्वास, प्रेम एवं आशा के मिशनरी बनने का प्रोत्साहन दिया और उनसे कहा कि वे संघर्ष एवं अस्थिरता से भरे इस भूमि पर मसीह की रोशनी एवं शांति लाने वाले बने। इराक के युवा 8 से 11 जुलाई तक अपनी वार्षिक युवा सम्मेलन के लिए एरबिल महाद्वीप प्रांत के अंकावा में एकत्रित हैं। इस अवसर पर पोप लियो ने उन्हें आशा की मिशनरी के रूप में अपने काम को अपनाने का प्रोत्साहन दिया और उनसे ऐसे देश में ख्रिस्त की रोशनी बनने की प्रेरणा दी जो अभी भी युद्ध एवं अस्थिरता के नतीजों का सामना कर रहा है। मिशन विषय वस्तु पर सभा में भाग लेने वाले युवाओं को एक विट्ठो संदेश में पोप ने याद दिलाया कि आज कलीसिया के जीवन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पोप ने कहा, कलीसिया का एक महत्वपूर्ण मिशन है ख्रिस्त की रोशनी बांटकर दुनिया की सेवा करना, और उन्होंने युवाओं को आने वाले साल में कलीसिया एवं दुनिया को आकार देने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कही गई अपनी बात को याद करते हुए पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि युवा न सिर्फ कलीसिया के भविष्य हैं बल्कि वर्तमान भी हैं और उस मुश्किल सच्चाई को पहचानते हुए जिसका सामना कई इराकी ख्रिस्ते अभी भी कर रहे हैं, पोप मानते हैं कि सुसमाचार का साक्ष्य देना अक्सर मुश्किल होता है। आपको ऐसी परिस्थिति में यह रोशनी फैलाने के लिए बुलाया गया है जो अक्सर युद्ध एवं अस्थिरता से भरी है। पोप लियो ने कहा, डरो मत और यह मत सोचो कि तुम इस काम में अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कलीसिया तुम्हारे साथ है, यीशु पर भरोसा रखो। रोशनी की छवि को अपने विचारों के मार्गदर्शक धागे के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे तीन गुणों पर जोर देते हैं जो हर ख्रिस्त शिष्य को बनना चाहिए, विश्वास, प्रेम और आशा। सबसे पहले वे बताते हैं कि प्रकाश हमें देखने में सक्षम बनाता है, इसलिए विश्वास केवल जीवन की कठिनाइयों का जवाब नहीं है बल्कि वास्तविकता की पहचान एवं सच्चाई में जीना है जो विश्वासियों को दुनिया, दूसरों और खुद को ईश्वर की आंखों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। वे युवाओं को अपने जीवन जीने के तरीके के माध्यम से गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि अन्य लोग भी उस सत्य एवं अर्थ की खोज कर सकें जो वे खोज रहे हैं। पोप तब प्रकाश को गर्म जोशी के रूप में दिखाते हैं जो ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। उनका कहना है कि सच्चा मिशन गतिविधि से नहीं बल्कि दैनिक प्रार्थना और संस्कारों से, विशेषकर मेल मिलाप संस्कार और पौत्री यूखरिस्त के माध्यम से पोषित ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात से शुरू होता है। पोप युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने हृदयों को अपने प्रति ईश्वर के प्रेम की ठोस नींव पर स्थापित करें, मसीह के हृदय को खोजें और उन पर अपना जीवन बनाने के लिए नहीं डरें। वे समझाते हैं कि केवल उस प्रेम से जुड़े रहकर ही वे अपने आसपास के लोगों के साथ ईश्वर के प्रेम की गर्माहट और उनके मेल मिलाप की शक्ति की कृपा को साझा कर सकते हैं। अंत में पोप लियो चौदहवें प्रकाश को विकास एवं आशा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मेल मिलाप के लिए तरस रहे क्षेत्रों में युवा ख्रिस्तों को शांति के निर्माता बनने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, आपको विशेष रूप से शांति दूत बनने, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करने और दूसरों को स्थायी शांति द्वारा चिन्हित भविष्य की आशा पैदा करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि वे हमेशा उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिनमें वे रहते हैं, फिर भी वे उन्हें याद दिलाते हैं कि हमेशा अपने दिलों में ख्रिस्त की शांति को राज करने का विकल्प चुनें जिससे वे पुनर्जीवित प्रभु से मिलने वाली आशा के चिन्ह बन सकें। अपना संदेश समाप्त करते हुए पोप लियो ने युवाओं को कलीसिया की माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया और उन्हें अपने जीवन के लिए ईश्वर की प्रेम भरी योजना पर भरोसा करने का प्रोत्साहन दिया। रब्बात के महाधर्माध्यक्ष का कहना है कि उन पर वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और कलीसिया ने शुरुआती जाँच शुरू कर दी है। जांच का नतीजा आने तक वे सार्वजनिक समारोहों और धर्माध्यक्ष के रूप में अपने प्रेरित कार्यों को नहीं करेंगे तथा धर्म प्रांत पीड़ितों और अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। रब्बात के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल क्रिस्टोबल लोपेज रोमेरो एसडीवी ने घोषणा की है कि जब तक वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के आरोपों की शुरुआती जाँच कलीसिया द्वारा नहीं हो जाती,
तब तक वे कुछ समय के लिए सार्वजनिक प्रेरितिक सेवा से पीछे हट रहे हैं। बुधवार 7 जुलाई को जारी एक बयान में 74 साल के स्पानी कार्डिनल ने कहा कि जांच अब रोमन कार्तिक करेसा के हाथ में है और उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा किया।

जांच में अपना पूरा सहयोग दोहराया है और कहा है कि उन्होंने कोई हमला, कोई हिंसा और कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी धम्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशद बच्चों को दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए पाकिस्तान में कलीसिया की प्रतिबद्धता पर चिंतन करते हुए जोर देते हैं कि बाल सुरक्षा सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी है। महाधर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।